अथी पास उकुमान मन कहले तनी थेले के अमरु है के मारा वे मैम यार है के रू गम पिया फुलानो।